को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए सेवा मंडल का मैं बहुत आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये भजन अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है भजन कुमार। फॉलो मी ऑन माई चैनल।

0: You're listening to Geetanjali. Geetanjali. Mondays, 6 to 7 p.m. Lotus FM.
1: For the start of the day. For breakfast tables. For easy mornings. And not so easy mornings. For whole grains. For high fiber. For every day. For you. For your family. For everyone. For having what it takes to keep going, but mostly for 100 years of mornings that have started this way. Start your day the Weet-Bix way with high fiber and whole grains.
2: Veena Lakshman
0: on Lotus FM.
2: बिल्कुल दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं और खेत की बात है मगर समापन की घड़ी करीब आ गई है और इसका मतलब है कि अब मुझे शुभ रात्रि कहनी है। मैं आपको याद दिलाती हूं कि 7 बजे के समाचार के बाद बारी आएगी टॉक एट 7 की और हम प्रोग्राम को समाप्त करेंगे मुकेश जी की रूहानी आवाज के साथ एंड ऑफकोर्स फॉलोइंग मुकेश जी विल बी द वॉइस ऑफ उमिता कल्याण। अगले हफ्ते अगर भगवान की मर्जी हो तो हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार और शुभ रात्रि।
3: मैंने

0: अरे भाई ये क्या हो रहा है?
1: अरे ढोलक बज रहा भाई, ढोलक
0: ढोला क्यों बज रहा है?
1: अरे शादी है यार, शादी
0: शादी हम भी चलेगा।
1: चलो